0: भरत भरत सो वार्डन सर आस्क्ड मी टू टेल यू दैट यू हैव बीन सिलेक्टेड टू डिलीवर द मेन इंडिपेंडेंस डे स्पीच टुमारो
1: मी आर यू श्योर विवेक
0: एब्सोल्युटली श्योर
1: बट देर आर अदर ब्रदर्स हु स्पीक बेटर देन आई डू
0: यू नो वट द प्रोफेसर से दैट यू आर द राइट पर्सन फॉर दिस सो डोंट वरी आई विल कैच यू अप लेटर सराम
1: सराम
2: Congratulations, Bharat. It's a good opportunity for you.
1: Thank you.
3: Congratulations, Bharat.
1: Thank you, Hari. By the way, do you have any tips for me?
3: Just don't give the same old textbook speech. Say something that impacts everyone. Speak from the heart, Bharat. Speak from the heart. Anyways, I gotta go. Sai Ram.
1: Sai Ram. How do I capture the soul of a nation in 5 minutes? What can I say about freedom that hasn't been repeated 1,000 times? There was a poem of Rabindranath Tagore that always inspired me. It must be in the rack somewhere.

ओंकार प्रिय शिव शंकर सार, कैलाश प्रिय शिव शंकर सार, नट जन प्रिय शिव शंकर सार, शंकर शंकर।